सिमरत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पावह मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड़ा अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी।

पद गंद बिन सह सब गंद विचलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंद नो मोहे आई प्यासा कृपा जल्द ही नानक सारं को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पन वड्डा हे कर डंडौत पन वड्डा हे रहाव सा कत हर दास साध ना जानिया तिलंतर होने कंडा हे ज्यों ज्यों चलै तुबे दुख पावै जम काल सह हे सर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौरी पूर्वी महला पंजवां करों बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो अरलाहा आगे बसन सहेला आउड कटे जिन तुर नारे मन गुर मिलका सुवारे रहाओ एहो संसार विकार संसिम तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पियाए रासिया कथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बेहाजो हर गुरते मन हे बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बाहोर ना होए गो फेरा अंतर जामी।

गोरखपुराकीर्तिपुरी प्रवरवरह्या परपुरी खेम कुशल पयाय सुनन्ना पार ब्रह्म बिट्टो कुर्बन्ना

देखो मन जाने मन कोय। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दर गहमान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान देखो कह करै विचार करते कह करणे नाही सुमार तौ धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत जेको बुझै होवै सचियार तवले उपर केता भार धरती होर पराय होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जा तिरंगा के नाव। सवना लिखिया बुड़ी कलाम मेहो लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोहन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार।

असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख मर कर जाहि जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहि, असंख पापी पाप कर जाहि, असंख कूड़िया और कूड़े फिराहि, असंख मलेश मल पख खाहि, असंख

तीर्थ तप दया दत्तान एक उपावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता भाव अंतरगत तीर्थ मलनाव सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए सुअस्त आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुत्ति माफ कवन जित हो आया कार वेल न पाया पंती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सठी कौ साजे आपे जाने सोई किव करया।

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र बाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र

नचत्रय नमित्रय परे हैं पवित्रय परथी सया दिशय दृशया कृष भगवती शांत्वय प्रसाद काते कि आशिज देसे क्या भिज भेस है क्या गंज करमे क्या भंज परमे क्या भिज लोक है क्या आदित सुख है क्या अवधूत बरने के बेभूत करने के राज प्रभ है कि धर्म तू जाहे क्या सुख बरने के सर्वा परने के जगतं कृति है क्षत्रं क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुभवन रूपे के आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्रम महीने के क्या दीने के रोजी रजा के रही मेरे हक के पाक भी ऐब है कि गैबुल गैब है कि अबुल गुनाह है कि सहान शाह है कि कारण को निंद है कि रोजी देहन है कि राज करही मैं कर्म करी मैं कि सर्वंकली है कि सर्वंगली है कि सर्वत्र मानी है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र दुगौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है कहे सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पहन है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमे के परम हिमे के आकर आलामे के साहिब कलम है के उसनुल वजू है तमाम रुजू है हमेशा लो सलाम है इसलिए खत्म होदा मैं गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है।

मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम हर वरिया गंज हर नर पर भान्यन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड भर नर मंड अन भवन आस।

करुणा ने है और काल है, खल खंडन है, मैं मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, तृत के तन है, जग के कर्ण है, मन मानी है, जग जानी है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मंड से खल खंड से परते पर है, करुणा कर है, अजप जप है, अथप थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्पायक है, पापंजन है, आर गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद

रहो भक्त हन लगायो नहात फिरियो लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब बै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशाह को शीस निवायो को भूतान को पूज तह पास

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतह है पातशाही दसवीं कवि बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोष सब तुम का बहुआ फाद दे मोहे बचा बहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेव सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन कौआ संगरिए पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा

तुम्हें शाड कोई अवर न ध्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ में मुझे उमरिय मरण काल का त्रास निवरिय हूं जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रचा राख ले हूं राखन हारे साहिब सन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

नमस्कार तुसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सावगुन सुख दियो सत्रन को पलमो मत कियो। काट

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब

एकै रूप अनूप सुरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर अकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपवे आजुगा स्वरूप सुयंपव।

0: कृपा दृष्टि तुम जाहिनी हरि हुत्था के ताप तन कमहे हरि हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्याश्व सके न कोई।
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण ते हारी आप हाथ दैले उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते देव बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल्बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता।

सुनै गुंगुरियो याहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाउ निक न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई। संबत 17 सहस पणिजय अर्थ फुन तीन कहिजय, भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया।

कथ की करह कहानी, करह कहानी कथ केरी के द्वारे पाइये, तन मन तन सब सौपुर को हुकुम मनिये पाइये। हुकुम मन्ने हो गुरु कीरा गावो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी।

चेत मन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशियारे आए। तदेक तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतरजामी अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाणा साहेब। होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं।

सब लाथे पाप को माते गुण गोविंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बांशत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुरु गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा

कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साज रहे सबको सच समावे। ऋग कहे रहया भरपूर राम नाम देवा मैं सूर न लै प्रशत जाहे नानक तो मुख अंतर पाए जुज मैं जो।

तोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुकमी हुकम चलाए राहो, नानक विगसै वे प्रवाह। साचा साहिब सच नाए, भाख्या भाओ अपार।

सत्संगत सतगुर पाइए अहनस सब सलाह रहाओ। सच वखर धन रास लै पाइए गुर प्रगास, ज्यो अग्न मरै जल पाइए त्यो तृष्णा दस दास। जम जंधार ना लग गई यो भव जल तरै तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रतै सच पाए, सकत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए। सच रतै गुर मिलियै सचै सच समाए। मन में माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर, सच वखर धन नाम है घट घट गहर गंभीर। नानक गुरमुख पाईऐ दया करै हर हीर। श्री राग महला पहला। परमै पाहे न विजवै जे पवे दसंतर देस, अंतर मैल न उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेस। होर कितै भगत ना होवै बिन सतगुर के उपदेस। मन रे गुरमुख अग्न निवार, गुर का कहया मन वसै होमै तृष्णा मार रहाओ। मान माणक निर्मोल है राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाईए गुरमुख हर लिवलाए। आप गया सुख पाया मिल सलै सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो सो औगण आवै जाए, जिस सतगुर पुरख न भेट्यो सो भौजल पचै पचाए। इहो माणक जियो निर्मोल है इहो कौडी बदलै जाए। जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल भौजल लंघियै दरगै पत प्रवान। नानक ते मुख उजलै तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारिओ वखर लिहो समाल, तैसी वास्तव साही है जैसी निभ है नाल। अगै साहु सुजान है लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर लै चलो सोह देखै पति आए रहाओ। जिन्ना रासना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटै वणज वणजियै मन तन खोटा होए। फाही फाथै मिर्ग ज्यो दुख घणो नित रोए, खोटै पोतै ना पवै तिन हार गुर दर्शन होए। खोटै जात ना पत है खोट ना सी जिस कोए, खोटै खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतियां पार ना भरम तिना। हर जपलाहा अगला निरभौ हर मन माहा। श्री राग महला पहला। घर दूजा। धन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़ै दिन चार, पबन केरै पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार। रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नौहुला, दिन थोड़ै थकै पया पुराना चोला रहाओ। सज्जन मेरे रंग लै जाए सुतै जीराण, हम्पी वंजा डुमणी रोवां चीनी बाण। की ना सुने ही गोरी है अपन कन्नी सोए, लगी आवै सहुरै नितना पेय होए। नानक

एहो आधार रहाउ मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जोही नीच सनात काम क्रोध तन वसै चंडाल तनक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलूकी वेस होठ गवाड़ा ठगी देस खरा स्याणा बहुता पार तनक रूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर हो क्या मोदे सा दुष्ट चोर नानक नीच कह बिचार तनक रूप रहा करतार। श्री राग महला पहला कर चौथा एका सुरत जेतै है जी सुरत विहूणा कोई ना की जेही सुरत तेहा तिन राहो लेखा इको आवो जाहो। काहे जी करै चतुराई लेवै देवै ढिल न पाई रहाओ। तेरे जी जिया का तो है कितको साहिब आवै रो है जे तू साहिब आवै रो है तू उन्ना का तेरे ओ है। असी बोल बिगाड़ बिगाड़ै बोल तू नदरी अंतर तोलै तोल जै करनी तै पूरी मत करनी बाजो कट्टै कट। प्रणवित नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाणै बूझै सोए गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगै प्रवान। श्री राग महला पहला कर चौथा तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंतलहां जै जै देखा तै तै तू है तुझ तै निकसी फूट मरा।

मनमुख नाम न जाननी बिना वे पत जाए शब्द साधना आयो लागे दूजे पाए विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा से विष्टा माहे समाए तिनका जन्म सफल है जो चले सतगुर पाए कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए हर हर नाम

डूब मुए बिन पाणी। मन रे सदा भजो हर सरणाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसरना जाई रहाउ। एहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई। आवण जाना जमण मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलाई। सतगुर की सेवा

तीजा किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का भाणा मन लई विचो आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम वसे मन आए नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए मन मेरे आनंदन जाग हर चेत अपनी खेती रख लै कूंज पड़ेगी खेत रहाओ मन की आयशा पूरिया शब्द रहया भरपूर पै पाए भगत करै दिन राती हर जियो वेखै सदा हदूर